वाए काया पाए तंगाए अमकुक बाबिराए लबात ब्राबिनान उतांग दलाम मकुरी पुआत तिया कुतकुआत वाए सरतारवात।